है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

सुन्दै हुनुहुन्थ्यो मेलिना राई र नेत्र राईलाई कल्पनामा। अब कार्यक्रममा पालो भएको छ आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दरको। युएस डलर एकको खरिदर 150.95 रुपियाँ, बिक्री दर 151.55 रुपियाँ। युरो एकको खरिदर 174.95 रुपियाँ, बिक्री दर 175.65 रुपियाँ। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर 202.36 रुपियाँ, बिक्री दर 203.17 रुपियाँ। स्विस फ्रान्क एकको खरिदर 190.37 रुपियाँ, बिक्री दर 191.12 रुपियाँ। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर 106.55 रुपियाँ, बिक्री दर 106.97 रुपियाँ। कनेडियन डलर एकको खरिदर 107.71 रुपियाँ, बिक्री दर 108.13 रुपियाँ। सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर 117.62 रुपियाँ, बिक्री दर 118.08 रुपियाँ। जापानिज यन 10 को खरिदर 9.42 रुपियाँ, बिक्री दर 9.46 रुपियाँ। चाइनिज युआन 1 को खरिदर 22.33 रुपियाँ, बिक्री दर 22.42 रुपियाँ। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरिदर 40.22 रुपियाँ, बिक्री दर 40.38 रुपियाँ। कटारी रियाल 1 को खरिदर 41.40 रुपियाँ, बिक्री दर 41.57 रुपियाँ। थाई भाट 1 को खरिदर 4.63 रुपियाँ, बिक्री दर 4.65 रुपियाँ। यूएई डिरहाम 1 को खरिदर 41.10 रुपियाँ, बिक्री दर 41.27 रुपियाँ। मलेजियन रिंगित 1 को खरिदर 37.11 रुपियाँ, बिक्री दर 37.25 रुपियाँ। साउथ कोरियन वान 100 को खरिदर 9.95 रुपियाँ, बिक्री दर 9.99 रुपियाँ। स्वीडिस क्रोनर 1 को खरिदर 16.06 रुपियाँ, बिक्री दर 16.13 रुपियाँ। डेनिस क्रोनर 1 को खरिदर 23.40 रुपियाँ, बिक्री दर 23.50 रुपियाँ। हङकङ डलर 1 को खरिदर 19.27 रुपियाँ, बिक्री दर 19.34 रुपियाँ। कुवैती डिनार 1 को खरिदर 491.77 रुपियाँ, बिक्री दर 493.73 रुपियाँ। बारेन डिनार 1 को खरिदर 400.39 रुपियाँ, बिक्री दर 401.98 रुपियाँ। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरिदर 392.09 रुपियाँ, बिक्री दर 393.65 रुपियाँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब गीत सुन्छौँ हामी नितेश जङ कुँवरको स्वरमा, खुलेर डल्लै।